0: हमना हाथ सामान तैयार को लाफ मेरे मोसा बालापा हमना मिकेंगुड़े ने हम आहार में ऑस्ट्रेलिया के केंगुड़े का रख बारु के दर ताजी सेटे हम एक सेटे में कौन था कुम हो दे यागे मिराज्य को मिगन्ना करनो ने बैठ अनिका यह आकुपुट वाण में सेट
1: ती आरंग हांदाम बागो तुन चावी तो राज्य में पैर दिया था तुरे गेना सेटे दिया गाँव में तक गिना का मुंहान दाने विस्निंग यहाँ रंगड़ा का इंग्लैंड उन्हें हाँ दाम वरनी
0: ऐं ता जावे द इंग्लैंड ना गोस कौन था घोरे मिमुनी कौन सिटी एक का कौन तंतर का विजिट कोरे
1: पुणे पाला जावे तो
2: मी देंग ने वहाँ के देख के जान क्या क्या विस यह रंगला क्या बात थी इतने
0: एका माको हम ना मिया बहार काज में तैयार करे अड़की कोरक तीतवे में एमे देमी हुंदो आर में कीने में हो रहा अच्छे काने अनेका फ्लाइट अंगेरी वस वर रंगला क्या गिरने तीतवे गन्ना थिए किया फमी हाँ वरो आरवाला करनु आने नो
1: नूने तीता मी मिके का हम को में दुआ को इसका तैयार करा गए वाकी तू रखा गिट्से ना आता मैं तो कहीं के अस माता माते इतना में गोया के घर में तानी मेरा शुगर होरी एम मेरी इती रेस्टोरेंट टा वारंग आगु बोडवान एक हम को काई चाहिए वारंग मेरवान वारस सालिवान इता आर में वारक गीना इतांगे तना दो जावी तो
0: तीता किताब में वारका रेस्टोरेंट तक दाही व्यस तीता भी पुनाने की कुरंग है दानी गेग मेरे को कक्का फुट्टा
2: ऐ ही हमारा रंगल बाह करनो
1: जावी तो हम बुन्यस आहरे बैनों में चिया हम अव्वा गुतों आहरे को आगे दाने
0: तीतो में तीकेंदिए हम वारा फेमस के रेस्टोरेंट कंगे असलूस वारा मेरो माँ गीना है मिके बुनी वस के नो वार बनी वस जे अनिका हम ना बुनी हिंग इतना साथ रीच जे हाँ दही क्या में हम ही बनी बेरु कोमी के रेस्टोरेंट कर दे उनो है हम ना तीतो में मिदानी कोटरी अंग आराम को लंगे मेरे दिन निदानी
1: मादमा वाणे रंगड़ प्रोग्राम में रावा लंदो
0: यह मिदनी ओशो वेला गुड नाइट
1: वाव तीता में इतनी बिवारा उफा बेफा मेरे रेस्टोरेंट का कांगो स्वा तीता हितंग अराने आहार में मी आहता के बाय नोने जावी देंगे ता बिलंगे रिवरो
2: इंगे सादस्ते कहनो
1: हर इंदी निंगे का मुकु फानरस्ते का फस्सते का गे तीन नोट हर इंबा वाले तीता इनी काली जहानु ला बाला हट्टे गे मिहार तीता हितंगरा ने जावी तकी हादा मुस्संदी मी है के तीता में ऑस्ट्रेलिया का दीरी उड़नस आहर में गाड़ू का दीरी उड़नस आहर में विस्वा की एमी हुन्ना वुरे देरनु आने का मिहार उंगे ने
2: हमना इंगे बैंकी है ता एबा विस्ने तो तिकुरे बनी की का
1: नून जावी तो लेक्चर नू फशादी आहर मेरे मेरे वारंगु फलो आहर बेन मी उफावेरी कम्मती हो रही था
2: हमना अडवा हाँ पला
1: नो
2: हमना रंगल कछे कीने हाथा नी देंग

0: मेहर गडिंग एकार गड़ी सालीस फर्स्ट मिनट मी दे राज्य गाडो मी गडी का मी धन्यवाद ने अमिल फरहत हो के देने वों अलगन में के मम्मा हेमवेर वाइट स्ट्रीम अमीना इब्राहिम वनी देहा सबिस में बावी हो का नियाई फे मम्मा के मच्छ दरन जनोत वसीत वाणमा फनर दो हो के तेरे का अलगन में ना गुलवा एक निम्मे होंगे ते में आई लग फरातुं हाइतम शरीफ नुवें हते नुवे दे देंग हतरें है सामी अहमद हतें नुवेंग है दे देंगे शादिया अहमद हतें नुवेंगे के हाइंगे के हाइ नुवे फातमत शर्मिला हतें अशे फहे फहेंगे के अशे फहे अलगन में के बप्पा राय नमादो नसीम विला मोहम्मद नसीम वनी दिहा सब्बिस में तेवी हुकनी आए फे बप्पा के मच्छ दरन जनो तवसे ते वाणमा एमस तो के तेरे का अलगन में ना गुलवा एकड़ने में होंगे दिमे आई लग फरातों अब्दुल फयास हते अशें हते अशे समय फहेंगे के हुसैन सफा नुवें अशें हते हते अशें अशेंगे के अहमद विशाम हते नुवेंगे के सुमेंगे के सुमेंगे अशे फातमत शिफा नुवें हाय फहे नुवे नुवे नुवे तिने अलगन में के बप्पा बातुला दो अफदार मोहम्मद उमर वनी देहा सबिस में हतावे हुगे नियाय फे पप्पा के मच्छ दरन जनवत वसीते वाणम देहा सबिस जून हतावे हुगे कुरिंग अलगन में ना गुलवा एक निम्मे होंगे ते में हाय लग फरातुं इब्राहिम जुबेर हते नुवें हाइंग हाइंग हतरें अशेंग हते मरियम शियाजा नुवें हते नुवे तिने नुवे दे तिने अलगन मिंगे लोबित बप्पा शावेनी कमांडो बारना अब्दुल्लो इब्राहिम वनी दिहा सबिस में हतावियु कनी आए फे बप्पा के मच्छ दरन्यन होत वसीते वाणमा एमस तो के तेरे का अलगन में ना गुलवा एक निम्मे होंगे दमे आई लग फरातो मोहम्मद अब्दुल्लो हते नुवे दे फहिंग एकिंग हाये आमने अब्दुल्लो नुवे अशिंग हाये हाइं हाइं हतरें अशे इब्राहिम रशीद नुवे फहिंग एके हाय फहे तिने फहे नसीमा अब्दुल्लो नुवे हाइं हतरे अशिंग हाइं एके तिने अलगन में के बप्पा वावु करने आदम अली वनी देहा सबिस में बावी हु करने आवे फे बप्पा के मच्छ दरन जनों तो वसीते वाणम एमस तो के तेरे का अलगन में ना गुलवा एक निम्मे होंगे ते में आई लग फरातुं सामी हु आदम हते अशे नुवे हते तीने फहे अशे शाह हु आदम हते दे हते फहे फहे हते अलगन के बप्पा नवीन फॉर्मूला समा फारूक अहमद वनी देहा सबिस में सतारा गनी आए फे बप्पा के मच्छ दरन जनवत वसीत वाणम एमस तो के तेरे का अलगन डागुलवा एक निम्मे होंगे ते में हाय लग फरातुं फारिश फारूक नुवे नुवे नुवे तीने तीने सुमे सुमे अलगन में के बप्पा मीम लम्हा तोहा बदीव वनी देहा सबिस में तेवी हुकनी आए फे बप्पा के मच्छ दरन जनवत वसीत वाणम एमस तो के तेरे का अलगन में ना गुलवा एक निम्मे होंगे ते में आई लग फरातुं फातमत अजमा हतें हाय सुमे देंगे के दे सुमे अहमद अफसान हतें हाय हतरे हतरें हाय हाय अशे अब्दुल्लो अफसल हतें हाय हते अशे तिने तिने दे इस्माइल असद हतें हाय हतरे दें हतरे हाय हाय अलगन में के बप्पा दफ्तर नंबर रासीन एकें हतरे एकें अशे अली जुबेर वनी देहा सबिस में बावी हु करनी आए फे बप्पा के मच्छ दरन जनवत वसीत वाणम देहा सबिस जून फनर आगे कुरिंग अलगन में ना गुलवा एक निम्मे होंगे ते में हाय लग फरातुं मुदाफी जुबेर हतें अशे अशे देंग अशे फहिसुमे मुराफी जुबेर हतें हतें हतरे देंग हतें अशे तिने मदफुआ जुबेर हतें हाएंगे के अशे सुमें हाय तिने मरियम जरीना मरियम जरीरा हतें अशें हतरे नुवे तिनें अशेदे अलगन में के बप्पा बा कुडरी किलो रोशनी के इब्राहिम आदम बनी देहा सबिस में एकावी हुगा नियाय फे बप्पा के मच्चे दरें जनवत वसीत वाणम एमस तो के तेरे का अलगन में ना गुलवा एक निम्मे होंगे ते में हाय लग फरातुं आमनत समाहत हते नुवे अशे हाएंगे के हाय सुमे फातमत नजाहत नुवे के दे फहे फहेंगे के दे समाहु इब्राहिम नुवें हते दे हते फहें एकें एके आयशत नजहत नुवे फहें अशे अशे सुमे सुमें हते अलगन में के बप्पा हादाल ने कुरेंदो इरमागे अब्दुल वाहिद अली दोंगली तुत्वनी देहा सबिस में अशावी हुकर नियाय फे बप्पा के मच्छ दरन जनवत वसीत वाणम एमस्त हुगे तेरेगा अलगन में ना गुलवा एक निम्मे होंगे ते में हाय लग फरातुं हफ्सा अब्दुल वाहिद नुवें एकें अशे अशें एके सुमें नुवे शाहरत अब्दुल वाहिद नुवें एकें हाय हाय फहें हाय तिने अली शरीफ नुवें हतरे फहे फहें हाय सुमें एके मरियम अफीफा नुवें हतें हते एके सुमें अशे दे अलगन में के मामा हाली फिहवंदु कुल्लवगे जारिया इदुरिस्वनी देहा सबिस में एत्तिरी हुका नियावे फे ಜಾರಿಯಾಯ ದುರಿಸ್ಕೆ ಮಚ್ಚ ದರಂಜನ್ವತ್ತ ವಸಿತು ವಾಣಮ ಎಮ್ಎಸ್ ತೂಗೆ ತೆರೆಗ ಅಳುಗನ್ ಮೆನ್ನಾ ಕುಳುವ ಎಕಣ್ ನಿಮ್ಮೆಯೊಂಗೆ ದೆಮೆ ಹಾಯ್ದಾಕ್ ಫರಾತುಂ ಹುಸೇನ್ ಶರೀಫ್ ಹತೆನ್ ನುವೆ ದೇ ಫಹೆ ಹತರೆಂ ಹತರೆಂ ಹತೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ನುವೆ ನುವೆ ನುವೆ ತಿನ್ನೆಂ ಹತೆಂ ಹತರೆ ಸುಮೆ ಅಳುಗನ್ ಮೆಂಗೆ ಮಮ್ಮ ಲವೆನ್ ಹಿನ್ನವರು ಜೌಫಾಣುಗೆ ಹಲೀಮಾ ಹಸಂಕೊ ಎವಣಿ ದೇಹಾ ಸಬ್ಬಿಸ್ ಮೇ ತೇರಾಗಣಿ ಆಯ್ಫೆ ಮಮ್ಮಗೆ ಮಚ್ಚ ದರಂಜನ್ವತ್ತ ವಸಿಯತೆ ವಾಣಮ ಎಮ್ಮಸ್ ತೂಗೆ ತೆರೆ ಕಳುಗನ್ ಮೆಣ್ಣ ಗುಳುವ ಎಕಣ್ ನಿಮ್ಮೆಯೊಂಗೆ ತೆಮೆ ಆಯ್ಲಾಕ್ ಫರಾತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕಾಸಿಂ ಹತೆಂ ಹತೆಂ ಹತೆ ಹೈಂಗ್ ಅಶೆ ಸುಮೆಣ್ಣುವೆ ಮೂಸಾ ಗಾಸಿಂ ಹತೆಣ್ ನುವೆಂಗೆಕೆ ದೇದ್ದೇಂ ಹತರಿಂಗೆಕೆ ಅಳುಗನ್ ಮೆಂಗೆ ಬಪ್ಪ ನೋಣ ವೆಲಿದು ಮೂಣಿಮಾಗೆ ಹಾರೋನ್ ಹುಸೇನ್ ವಣಿ ದೇಹಾ ಸಬ್ಬಿಸ್ ಮೇ ಫಣರಾಗಣಿ ಆಯ್ಫೆ ಬಪ್ಪಗೆ ಮಚ್ಚ ದರಂಜನ್ವತ್ತ ವಸಿಯತು ವಾಣಮ ದೇಹಾ ಸಬ್ಬಿಸ್ ಜೂನ್ ಫಣರಾಗೆ ಕುರಿಂಗ್ ಅಳುಗನ್ ಮೆಣ್ಣಾ ಗುಳುವ ಎಕಣ್ ನಿಮ್ಮೆಯೊಂಗೆ ದಿಮೆ ಆಯ್ಲಾಗ್ ಫರಾತುಂ ಖದೀಜಾ ಹಾರೂನ್ ಹತೆಣ್ ನುವೆಂ ಹತೆ ತಿನೆ ತಿನೆಂ ಹತೆಂಗೆಕೆ ಫರೀದಾ ಹಾರೂನ್ ನುವೆಂ ಹಯ ತಿನೆ ತಿನೆ ಏಕೆ ತಿನೆಕೆ ಐಷತ್ ಹಾರೂನ್ ಹತೆಂ ಅಶೆಂ ಹತರೆ ಹತರೆಂ ಹತೆ ಏಕೆಂ ಹತರೆ
1: ಕೊಮ್ಮೆ ಉಮುರಕ
2: ಕೊಮ್ಮೆ ಫಂತಿಯಕ
1: ಕೊಮ್ಮೆ ಗಿಂತಿಯಕ ದಿವೆಹಿರಾಜ್ಯಗೆ ಅಡು ಎಂಹಾ ಸತರ್ಸೆಗ ಸಾಳಿಸ್ನುವೆ ಕಿಲೋಹರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ವೇವ್
2: ಅಡ್ಡಿಹನುವೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ಎಫ್ಎಂ ಬ್ಯಾಂಡ್.

0: එං හා සතරස එක සාලිස් නුවයි කිලෝහට්ස් මීඩියම් වේව
1: අඩ්ඩි හනුවේ මෙගහට්ස් FM බෙන්ඩ්.
2: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিস করবা ফাবে আসালুল্লাহ আল জান্নাত ওয়া আউযু বিহি মিনান নার মানে স্বর্গ দেববং আদি মিয়ালা দন্নবানি হামাইকানি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা শ আদি নরকা গ আযাব সালাম বুমং আদি দন্নবানি বেস হামাইকানি একালাং গাশ
3: ಮೀ ದಿವಿರಾಜ್ಯ ಗಡು ದಿವಿರಾಜ್ಯ ಗಡು ತಿಂಗಡಿ ಎತ್ತಿರಿಸ್ ಮಿನಿಟ್ ಗಮಿಗೆನೆ ತೆನಿ ಮೇದ್ಗೆ ಅಸುರುನ ಮಾದ್ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದುವ
4: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್